0: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।
1: जाने मन

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मिना। दोस्तों, फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का दड़का पर। दोस्तों, वक्त हो चला है आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। दोस्तों, फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे हेलो फरमाइश का।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ सर, माधुरी जी।
1: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस?
0: बढ़िया गाना आया है सर।
1: बताएं सर।
0: जब तक रहेगा सीने में दिल।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से गाना। हेलो

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:08 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पल। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोनिका मीणा जी की। मोनिका मीणा जी ने हमें कॉल किया है सवाई माधेपुर से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी नाम बताएं।
1: आरबी भूषण गंगापुर
0: बताएं अरबी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: से
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना है लाडो बेटी और थोड़ा जल्दी चला दे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: Good news for DS Science Academy and Gangapur City and all over India. According to

0: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिटी।

0: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13-111.
1: Namaskar doston. Radio DS 89.6, Gangapur City ka tadka, Manoranjan ka sartaz, aapke apne Rishi Meena ke saath hazir hai. स्टूडियो नंबर 6378024 75. आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं. लाइव सुनने के लिए रेडियो DS 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें. क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं.
2: आसाराम
3: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से.
3: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: याद सताए तेरी नींद चुराए मोहन भजन सर.
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो
3: जी सर, नमस्ते।
2: मैं सत श्रीकाल जी।
3: सत श्रीकाल सर, नाम क्या है?
2: ठीक है, ठीक है।
3: हेलो
2: हेलो।
3: हाँ सर,
2: ठीक ठाक हो पाने में क्या?
3: हाँ सर ठीक है, थोड़ी आवाज थोड़ी कम आ रही थी ना इसलिए।
2: ठीक है पाने, ठीक है ठीक है। गर्मी वाली है ना, बाहर घट निकल रही है।
3: हाँ सर, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
2: टेम्परेचर 47 हो भाई साडा बठिंडे जिले का। मेरा नाम है अपने जूता सिंह मान, नाथ रोड तलमंडी चाजो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब।
3: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: अज मैं गाना सुना आरबू फिल्म का मां मदरफी का गाना, हर चेहरा जहाँ चांद है।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, धन्यवाद।
4: यहाँ चांद

0: आप कैसे हैं और हमारे रेडियो जी आपको समाचार भाई बहन कैसे हैं बहन जी?
1: सर सब ठीक है, बस गर्मी तेज पड़ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखे, अपना ख्याल रखे, ज्यादा धूप में ना निकले 10 बजे से और 3 बजे में ना निकले।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी जो आप मुझे इस तरह के बिल्कुल ख्याल करने के लिए कहे हैं दीदी।
1: सर मैं तो ये कहते हैं सारे श्रोताओं से यही कहते हैं कि 10 बजे से 3 बजे या 4 बजे तक की धूप मर बीच में बिल्कुल ना निकले, टाइम टाइम पर पानी पिए, क्योंकि इस टाइम गर्मी के मौसम गर्मी इतनी तेज है कि ना 36 डिग्री सेल्सियस चल रहा है इस टाइम।
0: यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ बहन जी, ग्राम जिनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ श्री प्रमेश साहू बहन जी।
1: जी सर।
0: और यहाँ पे पारा करीब 42 डिग्री सेल्सियस है बहन जी।
1: हाँ सर, कह तो रहे हैं कि गर्मी तेज पड़ रही है, यहाँ 36 डिग्री चल रहा है इस टाइम गंगापुर सिटी में।
0: हाँ, और आपके उधर 36 डिग्री है तो चलो कुछ कमी है, राहत है।
1: हाँ

0: मन भावन प्रस्तुति है बहन जी।
1: मैं एफएम रेडियो से आरजे पलक शर्मा बोल रही हूँ, रेडियो डीएसटेक।
0: हाँ तो पलक शर्मा जी, आपके लिए एक छोटी सी दो लाइन की पंक्तियाँ हैं, अगर इजाजत हो तो बोलूँ।
1: हाँ जी बोलिए
0: जी। खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, इन आंखों में रंगीन नजारे नहीं होते। हम भी ना करते परवाह अगर रेडियो डीएस से आज उद्घोषिका बहन पलक जी पलक

0: है बहन जी।
1: हाँ जी।
0: और है यार सुन यारी मेरी, मुझे जिंदगी से भी प्यारी है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहन जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: जी योगेश जांगड़े, मैं पराशक्ति
0: सर। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये मूवी है फान, और उसी में गीत है प्यार करने वाले प्यार करते हैं फान से।
0: ओके, तो सुना रहे हैं आप।

0: हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: लतीफ अहमदरीना।
0: लतीफ जी बताएं कहां से बात कर रहे हैं।
1: मैं कश्मीर से।
0: बताएं लतीफ जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म का नाम है खट्टा मीठा
0: जी।
1: हाँ उनका वो ये कुमार सानू नहीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर।
0: कौन सा गाना है सर।
1: इसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर गाते हैं।
0: चलो ठीक है सर, खट्टा मीठा से सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन
2: हेलो
3: ना
2: जी
3: सुना दे
2: गाना सुना दो देश की धरती सोना हो गई।
4: नाम क्या है आपका?
2: मुकुल वर्मा।
4: मुकुल जी कहाँ से बात कर रहे हो?
2: मऊ कला।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: मेरे देश की धरती सोना हो गई।
4: ओके सर सुना रही आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: नमस्ते,
1: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: गुलशन कहाँ से बात कर रही
0: हैं?
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: थोड़ी गाना
1: बिल्कुल सुना रहे हैं गुलशन जी, आपकी फरमाइश का गाना।

0: जी नमस्ते, नाम बताएं।
1: रईस खान।
0: रईस खान जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर गाना वो है

0: सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताए सर।
0: जी मेरा नाम सोहेल सैफी।
1: सोहेल सैफी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जी हम यहाँ सुनना चाहते हैं टोलन मूवी का नाम है धर्मवीर
1: जी,
0: और गाने के बोल है ओ मेरी महबूबा।
1: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी सुनाई।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
1: सर मेरा नाम अय्यूब सलमानी।
0: सलमानी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: सर? आज गाना सुनना चाहते हैं, आइए आपका इंतजार था।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं।

वक्त हो चुका है 11:25 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्धमान टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते,
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।
0: नमस्ते सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज जी सुनना है, पिक्चर का नाम है कुल्ली नंबर वन, ईद के बोल है जेठ की दो परी में पाव जले होती है।
0: एक तो सुना रहे हैं, फरमाइश करिए गाना रेडी दिया इसमें।

0: चला चला चला बाजू आ जा।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: नेहा।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: करौली से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: द विलेजर।

0: हेलो, हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: कहाँ से बात करे
0: जाऊंगी?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मुकाबला।
1: मुकाबला? हेलो,
0: हाँ
1: मुकाबला।
0: यस
1: ओके जी, सुना रहे हैं।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम अरविना है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो अरब जी?
1: यूनिवर्सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: सही आ रहा
0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेंगे।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगा प्रसिद्धि।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: लास्ट पैग।
1: लास्ट पैग।
0: हाँ।
1: ओके।

0: हेलो
1: हेलो सर जी नमस्कार।
0: सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: ब्रज मोहन महावर्ग।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी
1: आप? ये सुना दो, आदमी फिल्म का है धक धक दिल मेरा करने लगा।
0: कौन सा सर?
1: आदमी फिल्म का गाना है धक धक दिल मेरा करने लगा।

0: क्या है आपका?
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मोहम्मद यासीन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: पाल से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना सुनना है तुम्हें देखते मेरी आँखें।
0: ओके सर, सुनना है आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: Just a second, stop. Good news for DS and Gangapur City and

0: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टोकरेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं, मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो।

0: हेलो।
1: हाँ जी।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नितिन बनगर।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगापुर सिटी विनायक हॉस्टल।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फलानी सुना दो।

0: तो ये सर नाम क्या है आपका?
1: कुमार शंकर पटेल।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: पिपरिया सागर।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: अपनापन का गाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आती जाती रास्ते भी
0: यादें छोड़ सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में सेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: आप रेडियो की आवाज कम करो एक बार
1: जी। बिल्कुल
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका
1: जी? मेरा नाम जय किशन है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: कमलापुर सिटी कोलीपाड़ा से बात कर रहा था।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं वो एक रात की दुल्हन एक रात का दूल्हा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
0: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गौरव।
1: कहाँ से बात कर रही
0: हूँ? नटिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: दिल में सिर्फ इतना है उनको प्यार करते।
1: क्या सर?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: Just a second. Stop. Good news for DSN Academy and Gangapur City and all over India. According to

0: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं, मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: वक्त हो चुका है, 1 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस।

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी न

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: Just a second. Stop. Good news for Dear Science Academy and Gangapur City and all over India. According to NTR.

दोस्तों, वक्त हो चुका है 1:13 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों, नए तरानों के बीचों में बातें करते हैं गर्मियों के मसी

हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। पानी की कमी से थकान, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए ये आसान टिप्स अपनाएं। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं। घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और लस्सी जैसे प्राकृतिक पेय लें। तरबूज, खीरा, खरबूजा और संतरा जैसे पानी वाले फाये। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स कम लें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकते हैं। धूप में जाने से पहले पानी जरूर पिए और सिर को ढककर रखें। पसीना ज्यादा आने पर ORS या नमक चीनी वाला घोल फायदेमंद हो सकता है। सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीने की आदत डालें। अगर FM को फिट और एक्टिव रखना है तो पानी से दोस्ती कर लीजिए। हर थोड़ी देर में पानी पीते रहिए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: Just a second, stop. Good news for DS and Gangapur.

0: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं, मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: है तो बज चुके, इस वक्त आप मेरे साथ टोन कनेक्टी 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बोली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: Just a second, stop. Good news for DSN Academy and Gangapur City and

0: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं, मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS 89।
2: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: तो सुबह हो चुका है, 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो DS पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: Just a second. Stop. Good news for DSN Academy and Gangapur City and

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपकी मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मथुरा से मैं शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सती मथुरा से आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये दिल वालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है, ये प्यारा सा खूबसूरत गीत रेडियो डीएस गंगापुर से सुनना चाहता हूँ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: सुल्तान।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
0: लोगो कॉलोनी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मेरा चैन खो गया है।
1: मेरा चैन खो गया है।
0: हाँ मैम।
1: ओके सर, सुना रहे आपके फरमाइश करेगा।

0: आरबी पूजा।
1: कहाँ से बात करूँ?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मेरी कायनात मेरे खाली याद, मतलब कायनात सॉन्ग।
1: ओके मैम सुना रहे हैं।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: आसाराम गागन।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? गंगापुर सिटी अम्बेडकर गर्म सड़क पर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: घटा सावन की घटा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी नाम क्या है आपका?
1: बुलशन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मेरा पिया घर आया और राम।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो
0: तो नमस्ते
1: जी, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तो साहब बाबू खान छोटा सा है।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तुमने पुकारा हो और हम चले आए।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून मैम, क्या है आपका?
0: दिशा शर्मा गंगापति से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: यार झूठा ही तो जताया, इतना जाना था तो आया ही क्यों।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम अंकित कलमानी मैम।
1: जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं हम लाख सफाई प्यार मगर दुनिया को पता चले।
1: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: आपका।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: हम साबिर है, दशरथ मैदान से बोल रहा हूँ।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना है ये दिल ना होता बेचारा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर है गाना।

0: हेलो,
1: गुड इवनिंग मैडम।
0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मेरा नाम सोहेल सैफी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जी गंगापुर राजपुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: तेरे वास्ते गाना सुना आपने वरुण जैन, शादाब अल्तमाश की आवाज में, सचिन जिगर की आवाज में, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया। और सर्दियों वाली मॉर्निंग यानी विंटर मॉर्निंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनना कि विंटर मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा कोल्ड और बहुत ही ज्यादा फॉगी रहता है, जिससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, वो है गर्म कपड़े पहनना, वुलन कपड़े पहनना। और कई बार जब हम ऐसे मुंह खोल के बाहर सांस छोड़ते तो हमें फॉग नजर आते हैं। आपको नहीं पता था ना, झूठ मत बोला, आपको नहीं पता था। ऐसे ही और बचकाने फैक्ट के साथ, इम्पोर्टेंट विंटर फैक्ट के साथ मैं वापस आऊंगा, लेकिन बैक टू बैक पहले तीन गाने आपके लिए।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: गंगापुर सिटी की धरतर
1: देखो, अगर आपके गले में खराश है तो मेरे साथ रिपीट करो। चलो 1 2 3। नहीं नहीं, ये पार्ट आपको नहीं करना है। अर्जुन वेली गाना सुना आपने, फ्रॉम द फिल्म एनिमल, संग बाय बब्बल। बब्बल बब्बल जी ने बहुत ही प्यारा गाना गाया, भूपेंद्र बब्बल जी ने। लेकिन उससे भी प्यारा मैं एक स्पॉइलर तो है ही नहीं भैया। गंगापुर सिटी में अगर किसी ने, एक बंदे ने भी फिल्म देख ली, मतलब पूरे शहर ने भैया फिल्म देख लिया। और फिल्म एनिमल भैया 1,000 करोड़ के इतने करीब। बस मुझे यही फैक्ट बताना था, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, फिलहाल आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करूंगा। चलो अमेजिंग गाने बजा रहा हूं मैं आपके लिए, 4 गाने बैक टू बैक।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, मेरी बात ध्यान से सुनो कि शब्दों का जो वजन होता है वो हमारे ना बोलने के भाव से पता चलता है। वैसे तो दीवारों पे भी लिखा ही होता है वेलकम वेलकम वेलकम, तभी मेरा वेलकम करो भैया, क्योंकि आज का दिन आपका सुनहरा तभी जाएगा जब आप मेरे साथ अभी अगले एक घंटे तक जुड़े रहोगे और अमेजिंग गाने सुनोगे, अमेजिंग बातें सुनोगे और गंगापुर सिटी के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने प्ले करने वाला हूँ, कहीं मत जाना, सुनते रहो 89.6 रेडियो डीएस
1: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो डीएस।

0: भी नहीं चाहिए क्योंकि अलविदा कह के मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कहाँ? रेडियो DAC 89.6 पे,
1: गंगापुर सिटी की धरती। रेडियो DAC, रेडियो DAC, रेडियो DAC।

0: Station.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती। रेडियो डीएस
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाम बता हम कहाँ जाएं।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6 शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें

0: मैजिक रेडियो DS 89.6 शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
4: हाँ जी, खाटू जाने वाले सभी श्याम प्रेमी हैं, लेकिन कुछ उनमें बाबा के लाडले हो जाते हैं। ये भजन उन लाडले भक्तों के लिए। जय

0: मैजिक रेडियो
1: DS 89.6
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS रेडियो DS
2: बेरंग सी दुनिया में जब रंग बहता है शाम का प्रेमी

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 रेडियो डीएस।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें

0: करते हैं
1: गंगापुर सिटी की धरती
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: गंगापुर सिटी की धरती रेडियो डीएस

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ. सफरनामे में आज हम बात करने जा रहे हैं दिल के बारे में. किसी शायर ने खूब कहा है, गम मुझे हसरत मुझे वशहत मुझे सौदा मुझे एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे. जी हाँ, खुदा की बनाई गई इस बाहरी दुनिया के अलावा एक दुनिया और भी है. वो है हमारे भीतर की दुनिया जिसे उस ऊपर वाले ने ही बसाया है. और इस नगरी में खुदा ने हमें दिया है खूबसूरत सा प्यारा सा दिल जिसमें छुपी हुई हर धड़कन से जुड़ा है हमारे जीवन का मधुर मधुर संगीत. और आज जीवन के मधुर संगीत को हम और भी मदमस्त कर देंगे प्यारे से दिल में डूबे फिल्मी गीतों को सुनाकर. तो जनाब, इंतजार किस बात का, आपके लिए पेश है 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ.

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ. हमारे छोटे से दिल का मिजाज कुछ ऐसा है कि वो खुद को दर्द में डुबोकर जिंदगी का सारा मजा अपने प्रेमी के नाम कर देता है, और यदि उसे प्यार के बदले प्यार ना मिले तो वो यही कहता है.

सुन लो मगर ये किसी से न कहना, जिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ. ईश्वर की बनाई इस सुंदर अनमोल कृति में हर तरह के जज्बात बसे हुए हैं. कभी प्यार, कभी समर्पण, तो कभी नफरत की लहर भी इस छोटे से दिल में उतर आती है. लेकिन ये मासूम दिल गुस्से को भी प्यार में बदल कर उसके हाले दिल कुछ इस तरह बयां करता है. 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ फिर मिलूंगी आपसे.

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: देखो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, कब की हो गई, लेकिन मेरी आपकी शुरुआत अभी होगी क्योंकि भैया शो अभी चालू होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ शायरी पेश करो। करूँ ना? अच्छा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए शायरी पेश करता हूँ। शायरी कुछ ऐसी है कि द वेट ऑफ वर्ड्स इज नोन बाय द वे वी स्पीक, अदरवाइज वेलकम इज रिटन ऑन द वॉल्स टू। ये शायरी नहीं है, लेकिन जो अब मैं प्ले करने वाला हूँ वो गाने जरूर है, तो फिर एंजॉय करो, आराम से बैठो, बैक टू बैक चार गाने आपके लिए।
2: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो डीएस।

0: आप स्थिति के घर कर
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: गंगापुर सिटी की धड़कन
1: गौर फरमाना मेरे बात पे कि फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, अब आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई आई हाई आई हाई आई हाई। मेरी शायरी की तरह आपका दिन भैया बुरा नहीं, बहुत ही शानदार जाने वाले, क्योंकि मैं प्ले करने वाला हूँ आपके लिए अमेजिंग बैक टू बैक चार गाने ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस
0: गंगापुर सिटी की धड़कन। Radio DS.

0: क्या बात है, क्या बात है। जिस डेडिकेशन के साथ आपने इस गाने को एंजॉय किया, उसी डेडिकेशन के साथ मैं चाहता हूँ कि आप इन लाइंस को भी एंजॉय करो। चलो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कह दिया उसने अलविदा, कह दिया उसने अलविदा, जिसने कभी जुदा होने के बारे में सोचा भी नहीं था। वाह वाह वाह, अरे अरे अरे अरे, नहीं मैं आपको डेडिकेट नहीं कर रहा ये लाइंस, ना मैं खुद को कर रहा हूँ। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था, दोबारा मिलेंगे कल। फिलहाल आप ट्यून इन रहो 89.6 रेडियो डीएस पे,
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में हम बात करेंगे सन 1991 में प्रदर्शित राज कपूर साहब की महत्वाकांक्षी अंतिम फिल्म हिना के बारे में। फिल्म हिना में ऋषि कपूर साहब और पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आपको बता दें कि इस फिल्म में करिश्मा कपूर का भी काम करने का बहुत मन था। वो अपने दादा की फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम करना चाहती थी, लेकिन उनके दादा यानी राज कपूर साहब ने फिल्म में चिंटू अंकल यानी ऋषि कपूर साहब को ले लिया था, इसीलिए उनका सपना पूरा नहीं हो सका और वो फिल्म हिना का हिस्सा नहीं बन पाई। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। आज सफरनामे में हम बात कर रहे हैं फिल्म हिना की। 1991 में बनी इस फिल्म को ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा, निर्माण और निर्देशन रणधीर कपूर ने किया। मुख्य कलाकार इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब, जेबा बख्तियार और अश्विनी रहे। इस फिल्म का एक बहुत सुंदर गीत है चिट्ठियां दर्द फिराक वालिया। इसके गीतकार हैं नक्श लालपुरी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ. फिल्म हिना के बारे में बात हो रही है और उसके टाइटल सॉन्ग की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. फिल्म हिना के टाइटल गीत के लिए जब बातचीत चल रही थी तब राज कपूर साहब ने रविंद्र जैन साहब जिनका इस फिल्म में संगीत था उनको समझाया कि नायिका हिना का इंट्रोडक्शन सीन है जिसमें वो अपने बारे में खुद को बताती है. इस सिचुएशन पर गीत चाहिए. रविंद्र जैन साहब लिख कर लाए. मैं हूँ खुश रंग हिना, जिंदगी में कोई रंग नहीं मेरे बिना. ये सुनकर राज कपूर साहब बहुत खुश हुए और कहा कि बिल्कुल ऐसे ही मुखड़े की उन्हें उम्मीद थी. यही कुछ बातें थी राज कपूर साहब के बारे में. फिर आपसे मिलूंगी. अभी के लिए इतना ही. 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ.
0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: देखो देखो देखो, जो गाना भी आपने सुना है वो बड़ा ही प्यारा गाना था, लेकिन उससे भी प्यारे आप हो क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा है 89.6 डीएस। और एक फैक्ट बताना चाहूंगा मैं कि हमने सुन रखा है घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, और हमने देखा भी है, लेकिन हमने क्या नहीं देखा है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल के जीभ। और ये फैक्ट है कि क्रोकोडाइल्स जो है, मगरमच्छ जो है, वो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकते। मैं खुद से नहीं बना रही, ये वाकई में फैक्ट है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप अपने बुआ जी, अपने मौसी जी, अपने रिश्तेदारों की जितनी भी बुराई कर लो, जितनी भी बार कह लो कि भैया उनकी जो जुबान है वो कैंची की तरह चलती है, भले ही चलती हो, लेकिन एक बात तो प्रूफ हो गया, क्या, कि वो क्रोकोडाइल्स नहीं है। हंसो मत मेरी बात पे। चलो आपके लिए मैं चार अमेजिंग गाने बैक टू बैक प्ले कर रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएसपी।